विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948। आज रविवार, अधिक ज्येष्ठ शुद्ध नवमी अर्थात 24 मे 2017।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

दशसहस्रवर्षे पूर्ण हा तव पुत्र वाचेल। इतः पर तुझला सतत पुत्र सुख होईल खचित। प्रसन्न होऊनी म्या सांप्रत तुझ हा सूत।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत
1: बहुत साचे।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं एक भक्ति रचना, इसका गीत संगीत और स्वर है हरिओम शरण जी।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और स्वर है लता मंगेशकर और मन्ना डे।

0: भक्तिसुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओ, अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं हसरत जयपुरी की गीत रचना। संगीत है बप्पी लहरी का और स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।

विक्रम संवत 2082 शालिवाहन शके 1948 आज रविवार अधिक ज्येष्ठ शुद्ध नवमी अर्थात 24 मे 2026।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत।
1: बहुत साचे।

दशसहस्रवर्षे पूर्ण हा तव पुत्र वाचेल। इतः पर तुझला सतत पुत्र सुख होईल खचित। प्रसन्न होऊनी म्या सांप्रत तुझ हा सूत दिधलासे। तव पुत्र सुख विलोकून।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं एक भक्ति रचना, इसका गीत संगीत और स्वर है हरिओम शरण जी का।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और स्वर है लता मंगेशकर और मन्ना डे।

0: भक्तिसुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओ, अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत
1: बहुत सोचे।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।